0: Jelle Radio, de jannen het toch mijn favoriete radiostation.
1: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती पाठशाला में छुट्टी हो गई बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता क्यों...

हे सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

याद है तो बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: पर हुई।
1: यू आर Ujala Radio Headlines. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal. Daar werkt ProRail aan het spoor. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: ये दीपों का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सोने चांदी के सिक्कों के रूप में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। अपने मकानों को शुद्ध स्वच्छ करके खूब सजाया जाता है ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनमें निवास करें। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सिया जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनका राज तिलक किया गया। इस खुशी में अयोध्या के नर नारियों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। प्यारे भक्तों, इस पावन उत्सव के दिन महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से मुंह मांगा फल मिलता है, खुशियां मिलती हैं और शुभ लाभ मिलता है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर देन हाफ में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है, यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। हर एक सुनने वालों को आदाब अर्ज और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। एक के बाद एक नगमे हमने धागों में पिरो कर लाए हैं आपको सुनवाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन नगमों से लुत्फ उठाएंगे, मजे लेंगे, और एहसास है मुझे आप इस घड़ी को बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिंदगी जिंदगी कितनी भी मसरूफ क्यों ना हो, कुछ लोगों से अकीदत मतलब लगाओ, कुछ लोगों से अकीदत का ऐसा रिश्ता होता है कि वो यादों और दुआओं से कभी दूर नहीं होते। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मौला मेरे मौला, सुफियाना कलाम पेश है।

मौला मेरे मौला, महान गायक अनवर की आवाज़ में पेश था सुफियाना कलाम। भजन सुनवाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, राम कहाँ।

प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरे रंग रूप को निखार दे, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरे बाकी उम्र सवार दे, कभी ने की भी उसकी जी में गर आ जाए है।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान शायर मिर्ज़ा गालिब का कलाम और मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी। यकीन मानो कोई मजबूरियां नहीं होते, लोग आदतन वफा नहीं करते। हैरान हूँ ऐ सनम कि तुझे और क्या कहूँ, दिलबर कहूँ कि दोस्त कहूँ।

मुरली मनोहर स्वरूप की। एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए।

डट हुई है यार को मेहमान किए हुए, बेगम इकबाल बानो से पेश थी ये गजल। तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता है, जरा सी देर ही सही बेमिसाल होता है, खुमार गम है महकती फिजा में जीते हैं।

दिल छू लेने वाले गज़ल पेश थी जगजीत सिंह की आवाज़ और ख़ुद उन्हीं की मौसिकी थी कलाम महान शायर गुलजार की। अब हम आपके खिदमत में हल्के हल्के मीठी धुनों में नगमे सुनवाएंगे, जैसी कि ये नगमा।

0: गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो।
1: गोरी गोरी ओ बाके छोरी चाहे रोज बुलाया करो।
0: गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो।
1: गोरी गोरी ओ बाके छोरी।

सदाबहार सॉन्ग पेश था। गायिकाओं थे लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी। ये गीत अदाकार नलिनी जयवंत पर फिल्माया गया था। संगीत से सवारे थे सी रामचंद्र। इसी अंदाज में सुनवाते हैं रफी साहब से अगला गीत।

है चार के बराबर ये दो तांग वाला फिल्म छोटी बहन में से ये गीत पेश था। शंकर जयकिशन का संगीत और ये गीत महमूद पर फिल्माया गया था। एक बार फिर रफी साहिब से सुनवाते हैं अगला गीत, साथ में है लता मंगेशकर।

मोहब्बत भरे अंदाज में पेश था ये दो गाना। फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का गीत जो नेखनफ में रिलीज हुआ था और संगीतकार चित्रगुप्त संगीत से सवारे थे। इस रोमानी नगमा सुनवाने के बाद और कौन सा नगमा आप सुनना पसंद करोगे? हाँ तो लीजिए, इसी अंदाज में ये दो गाना पेश है।

खूबसूरत अंदाज में दिल छू लेने वाले दो गाना पेश था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अपने ख्यालों में डूबे रहे ये डुएट से।

अनमोल सदाबहार सॉन्ग पेश था शायर राजेंद्र कृष्ण का कलाम और मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी थी। जिंदगी का एक पहलू ये भी है जो लता मंगेशकर सुनाएंगी।

आप सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। इस हिस्से के प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में कोशिश है मेरी उन महान फनकारों के बारे में रोशनी डालने को, जिन्होंने अपने फन से, अपनी कला से हम सब के लिए खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं, जिन्होंने अपने काबिलियत से फिल्मी दुनिया की ऐतिहासिक किताबों की पन्नों पर उनका नाम सुनहरी अक्षरों में चमकते हैं। उन सब में गिनती है महान संगीतकार ओपी नैयर। ओपी नैयर जिसके संगीत में कुछ खासियत है, एक अलग सी पहचान है। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना कि ओपी नैयर नेहतिन सेवन फेतख में लाहौर से अमृतसर चले गए, लाहौर जो अब पाकिस्तान के हिस्से में गिनती है। बंटवारे के बाद उनके वालदैन अपने परिवार के साथ अमृतसर में रहते थे। हमने ये भी बतलाई थी कि ओपी नैयर को सिर्फ संगीत में दिलचस्पी था, संगीत के दुनिया में वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे। इस सपना को पूरा करने के लिए उसे अमृतसर से बॉम्बे जाना था। उसने ये सब सोचकर बॉम्बे का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी से बॉम्बे चले गए अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे में कितना मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ा, एक गीत के बाद बयां करेंगे। नगमे जो आप प्रोग्राम के दौरान सुनेंगे सब ओपी नैयर के सजाए नगमे हैं।

राकेश की आवाज और ओपन लेयर की संगीत पर पेश था ये गीत। तो जैसे मैंने गीत से पहले कहा, चल पड़ा था ओपन लेयर अकेले बॉम्बे अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे स्टेशन पर जब कदम रखा तो किस तरफ, पर इतना उसे अपने आप पर यकीन था कि उसे संगीत की दुनिया में कदम रखना है। शुरू शुरू में ओपन लेयर ने दर बदर भटकता रहा, फिल्म स्टूडियो के आसपास फिरता रहा। फिल्म में उसे अदाकारी करने का मौका मिलता तो वो भी उसे मंजूर था। फिर एक दिन अचानक उसे अपना बचपन का दोस्त कृष्ण कुमार से मुलाकात हुई। कृष्ण कुमार उन दिनों फिल्म कनीज तैयार कर रहा था, जिस फिल्म में मौसिकार गुलाम हैदर और हंसराज बहल संगीत सजा रहे थे। कृष्ण कुमार ने ओमकर प्रसाद से कहा, अब तुम्हारे भटकने का दिन खत्म हो गया, मैं तुम्हें दो महान संगीतकारों से तारुफ कराएंगे। तो इसी तरह ओमकर प्रसाद को मौका मिला फिल्म कनीज में ऑर्केस्ट्रा के साथ धुन बजाने को। फिल्म कनीज बनकर जब दिखाई गई पर्दे पर तो दर्शक फिल्म को नहीं पसंद किया। ओमकर प्रसाद मायूस होकर रह गए। कहानी दिलचस्प है, एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे। जब

किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि फिल्म कनीज की नाकामयाबी के बाद ओमकर प्रसाद परेशान रहता था, बहुत मायूस था। ऐसे में उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। ओमकर प्रसाद की परेशानी की वजह सुनकर गीता दत्त ने कहा गुरुदत्त से मिलने को। गुरुदत्त फिल्म बास की शूटिंग कर रहा था। इसी तरह ओपी को एक बार फिर मौका मिला इस फिल्म में संगीत से मदद करने को। पर इससे पहले ओपी को दो फिल्मों में संगीत सजाने का मौका मिला था, फिल्म आसमान और छम छमा छम। पर ये फिल्में आवाम नहीं पसंद किया। आइए मिलकर सुने ओपी नायर का पहला सजाए गीत।

फिल्म आसमां में से आपने अभी ये गीत सुना। गाने वाली थी गीता दत्त। इस गीत को ओपी नैयर ने सजाए है। ये ओपी नैयर का पहला सजाया गीत है, पर दर्शक ना इस फिल्म को और ना ओपी नैयर की सजाए संगीत पसंद किया। सुनहरे दौर का प्रसिद्ध पेशकश हिदायतकार और अदाकार गुरु दत्त फिल्म बाज तैयार कर रहा था। गीता दत्त की बात मानकर ओपी नैयर ने जब गुरु दत्त से मिला तो उसने इनकार नहीं किया और पूरा यकीन के साथ गुरु दत्त ओपी नैयर को मौका दिया फिल्म बास के नगमे सजाने को। आइए हम आपको फिल्म बास का गीत सुनाते हैं, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म बास का गीत आपने अभी गीता दत्त की आवाज में सुना। इस फिल्म के सभी गाने ओपी नैयर ने सजाए हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद फिल्म बास सिनेमा घरों में चला नहीं। एक बार फिर ओपी नैयर मायूस हो गया, अब बेरोजगार था। इसी दौरान उनका शादी भी हो गया। कब तलक वो अपने बीवी को झूठी तसल्ली दिलाते? तो उसने फैसला किया अमृतसर वापस जाने को। पर वापस जाने से पहले ओपी गुरुदत्त से पैसे के बारे में जिक्र किया। फिल्म बास दर्शक नहीं पसंद किए, पर गुरुदत्त ओपी नैयर की संगीत से खुश था और उसे फिल्म आर पार में दोबारा मौका दिया संगीत सजाने को। हम आपको गीता दत्त की आवाज और ओपी नैयर की सजाए संगीत सुनाते हैं।

शमशाद बेगम की आवाज और ओपी नैयर का भड़कता संगीत से संगीत के दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। फिल्म आर पार के बाद ओपी नैयर पीछे मुड़कर देखा नहीं, उनके संगीत से एक नया दौर शुरू हुआ। संगीत में नयापन था, नजाकत था, ताजगी था। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्रोड्यूसर्स अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। ओपी नैयर, शमशाद बेगम, गीता दत्त, मोहम्मद रफी या आशा भोसले को ध्यान में रख कर संगीत सजाते थे। आशा भोसले आज जिस मकाम पर है, बुलंदियों पर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हाथ ओपी नैयर का है। आइए सुने एक साथ दो महान फनकार की खूबी।

ओपी नैयर की संगीत और आशा भोसले की आवाज तहलका मचा दिया था। कैसे हम भूल सकते हैं नासिर हुसैन की पेशकश तुमसा नहीं देखा और फिर वही दिल लाया हूं की संगीत। ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर ओपी नैयर की कुछ तराने मतलब सॉन्ग्स रेडियो के जरिए सुनाने की मना कर दिया था। वजह ये थे कि संगीत में ज्यादा विलायती का असर था। ओपी नैयर अपने असूलों पर अटल थे। जब वो महसूस किया कि अब यही वक्त है बॉम्बे से चले जाने को, तो वो अपने बीवी बच्चे के साथ बॉम्बे छोड़ दिया। ओपी नैयर के चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा। उनकी बीवी सरोज मोहिनी नैयर भी गीत लिखती थी, जैसे ये गीत।

प्रीतम आन मिलो, इस गीत का तर्ज सरोज मोहिनी नैयर ने लिखा और ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। ओपी नैयर अपने बीवी बच्चों से अलग एक दोस्त के साथ विरार में रहता था। महान संगीतकार ओपी नैयर 28 जनवरी 2007 में दुनिया को अलविदा किया। उनके संगीत में आज भी वही ताजगी है, दिल में एक लहर से उठती है। जब तलक कायनात रहेगी, ओपी नैयर की संगीत फजा में लहराते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में हम फिर एक ऐसे ही महान फनकार के बारे में बयां करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान प्रसिद्ध मौसिकार ओपी नैयर के बारे में बयां किया। प्रोग्राम सबरंग आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं रफी साहब से ये नगमा।

फिल्म कन्यादान में से ये नगमा पेश था हसरत जयपुरी का बोल और शंकर जयकिशन की मौसिकी थी। दोस्त तो बहुत थे, दोस्त तो बहुत थे सफरे जिंदगी में, रफ्ता रफ्ता रफ्ता रफ्ता छोड़ते गए हाले गरीबी देखकर। ये सोने की दुनिया, ये चांदी की दुनिया, यहाँ पर गरीबों की औकात क्या है।

गरीबों की दुनिया, ये चांदी की दुनिया, रोंते खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमे सुनकर, क्यों ना हो, क्योंकि इस तर्ज को महान कवि भारत व्यास ने लिखे हैं और हेमंत कुमार ने अपनी आवाज से गीत में चार चांद लगाए हैं। कुछ हार गई तकदीर, कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ छोड़ गए अपने, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो।

फिल्म होली आयरे में से ये गीत लिया है कल्याण जी आनंद जी का संगीत रचना और इंदिवार का लिखा तर्ज था। अब आइए सुने मोहम्मद रफी साहेब और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये दो गाना।

अमर गीत पेश था वसंत देसाई की मौसिकी और कवि भारत व्यास का गीत रचना था। अगला दो गाना पेश है, गाने वाले है सुरीली आवाजों में आशा भोसले और रफी साहब।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Jala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath National Indian Orchestra, 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। कभी याद किया वफा को तेरी, कभी आए जफा याद, रही कश्मकश यही यही रात भर हाल रहा, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत बोल, आनंद बख्शी का आवाज थी मुकेश जी की। अब आइए सुने आशा भोसले से अगला गीत।

0: फिल्म गुमराह का नगमा पेश था रवि की मौसिकी और साहिर लुधियानवी का लिखा तर्श, आवाज थी महेंद्र कपूर की। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुड़ते गुजरे पर अब तक वो ठिकाना याद है।
1: बोले

गीत पेश था कानों में रस घोलने वाली आवासी आशा भोसले की। अब लीजिए दिल लुभाने आ रहे हैं मीठी आवाज में मोहम्मद रफी साहब।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की, संगीत से सवारे थे संगीतकार रवि और तर्ज को लिखे थे साहिद लुधियानवी। एक बार फिर रफी साहब से पेश है अगला गीत और साथ दे रही है मीठी सुर में सुमन कल्याणपुर।

0: खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। संगीतकार शंकर जयकिशन का संगीत, गीतकार थे हसरत जयपुरी। अगला गीत आइए सुने, मन्ना दे से वो क्या सुनाएंगे, लीजिए पेश है और मजे लीजिए।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

उमंग भरा गीत पेश था राहुल देव बर्मन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा तर्स। इस भरकता गीत के बाद क्या पेश करूं? हाँ, उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं। दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो तेरे सिवाय कुछ भी नहीं। तुम बिन अब तो रहा नहीं जाए।

सदाबहार नगमा पेश था मौसिकार राजेश रोशन की मौसिकी, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अगला दो गाना सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

गीत पेश था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों में। इसी रोमानी अंदाज में आप लुत्फ उठाइए ये नगमा से।

0: नशा नशा नशा सा है। बोलिए रब बोलिए सब सुना सुना सा है।
1: कमाल का नगमा आपने अभी रफी साहेब से सुना। आज भी इन नगमों में वही ताजगी है। अब हम सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और मीना कपूर की आवाजों में ये दो गाना।
0: तेला ओ तेला ओ तेला, तेरा जाने था अब तक अकेला।
2: जाने को

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। आवाजें थी महेंद्र कपूर और मीना कपूर। मीना कपूर जो संगीतकार अनिल विश्वास की बीवी थी। अपनी मीठी ख्यालों में डूबी रहे इस गीत के साथ ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमा थी निशा।

हंस रही है चांदनी, मचल के ना रो दू कहीं, ऐसे कोई रूठता नहीं। वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए है। सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाजों आप अभी ये प्रोग्राम में सुने हैं। शागिर्द फिल्म का नाम है, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल।

0: Jalinde. Jalinde?
1: U luistert naar Ojala Radio. Sujana hè toch?
2: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। ये है उजाला रेडियो, यूआर का पैगाम है। हमारे सभी सुनने वालों को एक बहुत ही मुबारक दिन अर्ज की जा रहे हैं। मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके खिदमत में। और पहली बार मिले हैं सुरेश वाटकर और रेखा भरद्वाज की आवाज, साथ में सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला। इट्स यू आर

हमने की है, हमने की है तुमसे मोहब्बत, मोहब्बत की है पहली बार। By the rocking and most sensational leader in broadcasting, you are

मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके खिदमत में पेश किए जा रहे हैं आज इस एक घंटे का पैगाम में। और फोन का नंबर 02-4-09-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर एक आमर का आज के वास्ते आपके मनोरंजन के वास्ते कुछ मिले जुले संगीत जैसे अभी कहा है आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। ऐसे में हो जाए फिल्म आजा सनम से सन 1992 का फिल्म आजा सनम से हमने तुमको चुन लिया नजर नजर की बात है क्या बात है। जो लोग बीमार दुखित या तो लाचार है आपकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है आप हमें

हम आपके खिदमत में कुछ अच्छे अच्छे सिलेक्शंस सुना रहे हैं और ऐसे में हो जाए एक गोल्डन ओल्डी नगमा शैलेंद्र सिंह और द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आयशा भोसले की आवाज रफू चक्कर नामक फिल्म से। हाँ, रफू चक्कर नामक फिल्म से ये सिलेक्शन अर्ज है हमारे सभी सुनने वालों के वास्ते।

0: Radio met Shahid Gulzar.
1: Oh my God. Ikaisan Puran Murchan Gana. आइए सुनते हैं द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश के बाज सुहाना सफर और ये मौसम हसी

The Heart of Millions, The Mighty Mukesh जी की आवाज में आपने भी सुने हैं कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी हमें डर है, हमें तो डर है कि हम खो ना जाए कहीं। अरे जाना हाँ जी, यू आर का पैगाम आप सुन रहे हैं और अब आपको एक सिलेक्शन सुनाने वाला हूँ। एक गजल है, चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके रात दिन, गुलाम अली साहब की आवाज में ये गजल आप सभी सुनने वालों के खिदमत में अर्ज है।

0: गुलाम अली साहब की आवाज में गजल आपकी खिदमत में यूआर के जरिए पेश की गई है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: You're listening to Ujala Radio, the number one station.

0: बुद्धू। ये पुरनूर चेहरा, ये दिल कश अदा, नमूना नमूना है
1: ये दिल कश अदा, नमूना हो कुदरत,
0: नहीं तुमसे बेहतर कोई दूसरा
1: नहीं तुम।
0: सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है।
1: कुदरत की कारीगरी का
0: The rocking and most sensational leader in broadcasting, you are Ujala Radio का पैगाम है। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम और काज के वास्ते आप फोन का नंबर नोट कर लेना 02040908 07। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 और दिन 3 के दरमियान आप डायल कर सकते हैं एम्स्टरडेम में 02040908 07 पर। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम और काज के वास्ते इश्तहार, जरूरी खबरें, मृत्यु समाचार, फरमाइश या जो भी रेडियो कार्य के वास्ते 020 409 0807

0: ओय होय छोड़ के शर्म। बंदा का नाम रॉबिन हुड है,
1: बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है,
0: मैं भी गुड हूँ, दिल का शुद्ध हूँ।

मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं उजाला रेडियो के जरिए। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप जिस हालात में भी है, हर एक को एक बहुत ही मुबारक दिन, शुभ दिन अर्ज है। द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़।

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.net

मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

Maria. Film सागर का गीता शाजी एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में आप सुने उजाला रेडियो पर. एंड न्यू नोखंकेरा शाजी मदन मत किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ यादों की बारात. उजाला रेडियो है

0: सिंह साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

और रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

हवा हवा ऐ हवा, मुझे तो उड़ा ले खवून, हमें तो उड़ाई ले क्लैर। मीका सिंह, प्रकृति ककर एंड गौरव रोशन से आप गीत को सुने एंड ओजाला रेडियो है ये सुनने वालों, सुन गाना।

हर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैनी दया एंड श्रेया घोषाल। इन दोनों से आप सुने फिल्म गजनी का गीत, और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर श्रेया घोषाल मारदान सोनू निगम के साथ।

और तूने तो पल भर में चोरी किया रे मोराजिया, पल भर में चोरी किया मोराजिया। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इन दोनों से आप सुनिए फिल्म दबंग का गीत है। दबंग एंड नोख अंकेर श्रेया घोषाल जावेद अली के साथ।

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्दे दिल। प्रोग्राम दर्दे दिल जिसमें दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं, उन गीतों जो सुन करके कभी कभी दिल को तसल्ली मिलते हैं और कभी कभी दिल का दर्द जो है और ज्यादा हो जाती है। दर्दे दिल आपके लिए बनाया जा रहा है उजाला रेडियो पर। तो चलिए आज का प्रोग्राम में पहला गीत होंगे हेमंत कुमार जी की आवाज में।

जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरे छीन के बता कि तुझे क्या मिला। हेमंत कुमार की आवाज, खुद हेमंत कुमार के साज और संगीत पर फिल्म नागन से गीत को आप सुने। 1954 के फिल्म नागन में उन दिनों काम किए विजयंती माला के साथ प्रदीप कुमार और जीवन।

हम और उनका ख्याल आ गया। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, म्यूजिक कंपोजर। 1968 की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त, और इस फिल्म में उन दिनों काम किए शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र एंड रहमान जी।

बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। लता जी की आवाज में आप गीत को सुने शंकर जय केशन के साज पर। और फिल्म बनाई गई 1965 में निखंतिन फैफन जस्तक के फिल्म आरजू, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों साधना, राजेंद्र कुमार, फिरोज खान एंड नजीर हुसैन साहब। ये उजाला रेडियो है और प्रोग्राम दर्द दिल पेश है।

दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप गीत सुने। देखा जाए 1958 के फिल्म और फिल्म का नाम मधुमति, हाँ मधुमति, और इस गीत को सजाए संगीत से सलील चौधरी। फिल्म में काम किए उन दिनों दिलीप कुमार, विजयंती माला, प्राण एंड जॉनी वॉकर। एक बार फिर लता जी।

अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा बस हम ही को पाइएगा। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म आरजू। अभी कुछ देर पहले इस फिल्म के एक गीत हम आपको सुना चुके, 1965 निखंतिन फैफन जस्तक के फिल्म आरजू में काम किए साधना, व्रजेंद्र कुमार, फिरोज खान एंड नाजीर हुसैन साहब। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल।

तुमको ना भूल पाएंगे, मुकेश जी की आवाज में आप सुने और शंकर जयकिशन संगीत से सजाए 1970 निखंतिन जीफन तक की फिल्म मेरा नाम योकड़। और इस फिल्म में काम किए राज कपूर, ऋषि कपूर, सिमी गरेवाल और मनोज कुमार के साथ भी धर्मेंद्र जी। अगला गीत लता जी से आप सुनेंगे।

अगर न मिलता गम तो। लता जी की आवाज में आप इस गीत को सुने 1954 के फिल्म अमर में पेश आई। नौशाद म्यूजिक कंपोजर रहा उन दिनों और काम किए इस फिल्म अमर में मधुबाला के साथ दिलीप कुमार एंड निमी जी। ये उजाला रेडियो है।

होता जिसको अपना हम कह देते अपना। किशोर कुमार की आवाज और 1971 के फिल्म मेरे अपने में गीत पेश आई। सलील चौधरी ने संगीत से सजाई इस गीत को और फिल्म मेरे अपने में काम किए मीना कुमारी, विनोद खन्ना एंड शत्रुघ्न सिन्हा।

यही वो फजाएं, यही है जहां कभी आप और हम मिले थे। आशा जी की आवाज़ में गीत आप सुने। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी, 1966 ने हंतिन जसन जीफन तक की फिल्म, जिस गीत को भी ओपी नैयर ने संगीत से सजाए और फिल्म में काम किए शर्मिला टैगोर, बिस्वाजी चटर्जी एंड मुमताज जी। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, प्रोग्राम दर्द दिल, जिसमें दर्द भरी गीतों हम आपको सुना रहे हैं।

मेरा दिल ये पुकारे आजा, लता जी की आवाज। फिल्म नागिन 1954 1954 की फिल्म नागिन, और जिसमें म्यूजिक कंपोजर था हेमंत कुमार, और काम किए इस फिल्म में विजयंती माला के साथ प्रदीप कुमार।

खुद पे और कभी हालात पे रोना आया, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़। 1961 के फिल्म नीखुंतिन एनन जस्तख के फिल्म हम दोनों से इस गीत को हम निकाले। म्यूजिक कंपोजर जयदेव और इस फिल्म में काम किए देव आनंद के साथ साधना एंड नंदा जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।